सुप्रभात। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आज दिन है शुक्रवार, शक संबत 1948, श्रावण महीने की 9 तारीख और अंग्रेजी सन 2026 की 31 जुलाई है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हुए हैं, यानी समय हो चला है आज की पहली सभा आरंभ करने की। मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आरंभ करती हूँ आज की पहली सभा।

0: वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी की आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सबको आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं।

6:10 से आप सुनेंगे भक्ति गीत का कार्यक्रम, तत्पश्चात आप आनंद लेंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग का, समय रहेगा 6:30 का। 7 बजे एक बार फिर से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर हम आपको जानकारी देंगे आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही हम जानेंगे आज के दिन वो कौन कौन से मशहूर व्यक्ति है जिनका जन्म हुआ था, साथ ही हम जानेंगे उन मशहूर व्यक्तियों के नाम जिनका आज के दिन निधन हुआ था। 7:30 पर आप सुनेंगे प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज, इसे प्रस्तुत करेंगी अंकिता मित्र फंसा। 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। देशभक्ति गीत कार्यक्रम का समय रहेगा 8:15 का। आकाशवाणी का शिलांग केंद्र से रिले किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट न्यूज, समय रहेगा 8:30 का।

8:40 का समय रहेगा कार्यक्रम सुरों की रंगोली का। 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे आंचलिक वातुरी। स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम आरंभ होगा 9:15 पर, जिसमें आप सबसे पहले आनंद लेंगे खेलमा भक्ति गीतों का। तत्पश्चात आप सुनेंगे रांगखोल भक्ति गीत, समय रहेगा 9:25 का। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे जयंतिया कार्यक्रम, समय रहेगा 9:35 का। और आज के जयंतिया कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ जयंतिया भक्ति गीत। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे बेते आधुनिक गीत, समय रहेगा 9:45 का। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के पश्चात हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे। और उसी बीच हर घंटे हम आपको सुनवाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। विविध भारती के कार्यक्रमों का आप आनंद ले पाएंगे लगातार शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के पहले सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

दोस्तों, आप आनंद ले रहे थे भक्ति गीत कार्यक्रम का, और इसी गीत के साथ ही भक्ति गीत कार्यक्रम आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप आनंद लेंगे वीमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग का, और पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म निर्जा से कविता सेठ की आवाज़ में।

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेलफोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,
1: इडियट
2: चेक,

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। और इसी गीत के साथ ही हमारा आज का वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एक बार फिर से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति CP राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और

0: युवाओं की हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुकतुब दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाले लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलिरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सिल्वा प्रभु थिरुमानन ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुनेंगे आज के पोएम ऑफ द डे में द्वितीया दे के आवाज में एक प्यारी सी कविता।
3: नमस्कार, मेरा नाम द्वितीया दे है। मैं क्लास 3 में डॉन बॉस्को हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी का पोएम सुनाऊंगा, एक दुनिया रचे आओ हम प्यार की, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ है संसार की। एक धरती ने हमें दिया है जन्म, एक धरती के बेटे हैं हम, मान लो अजनबी हो भले हाथ अपना, मगर गर्मियाँ एक दूजे की पहचान लो। तो डालेगी दीवार बेकार की, धूप गोरी है कि रात काली है कि, इन सवालों का आज भी कुछ मतलब नहीं। बाल

0: बात इंसान को उन ख्यालों का आज भी कुछ मतलब नहीं, जोड़ कर हर कड़ी टूटे तारे की एक दुनिया रचे आओ हम प्यार की। लेखक रमेश तेलंग। थैंक यू।
1: दोस्तों, आपने सुना ये प्यारी सी कविता द्वितीया दे के आवाज़ में। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हावलौंग केंद्र है। दोस्तों, अभी हम आपको आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। जानेंगे हमारे देश और विदेश में वो कौन कौन सी घटनाएं घटी थी जो हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। साथ ही हम जानेंगे उन मशहूर व्यक्तियों के नाम जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था, और उन मशहूर व्यक्तियों के नाम जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया से अलविदा कहा।

दोस्तों, आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी तीसरी यात्रा के दौरान 1498 में त्रिनिदाद द्वीप पर पहुंचे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई 1658 को स्वयं को मंगोल का राजा घोषित किया था। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्व क्लिस्ट्रेन ग्रेट चेस्टर शहर में विश्व की पहली छोटी रेल लाइन 1865 को शुरू हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने 1924 में रेडियो प्रसारण संचालित करने का बीड़ा उठाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1933 में हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने 1940 में उग्र क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उद्धम सिंह को लंदन में फांसी दी थी। भारत में सबसे पहली राज्य परिवहन सेवा पश्चिम बंगाल में यानी कि कलकत्ता राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1948 में की गई। भारत और नेपाल ने 1950 में शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। अपोलो 15 अंतरिक्ष यात्रियों ने 1971 में इलेक्ट्रिक का 6.5 घंटे की यात्रा की थी। सितार वादक पंडित रविशंकर मैगसेस 1992 में पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में 1993 को उद्घाटन किया गया था।

प्रोफेसर अशोक सेन को 2012 में पहले यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज के 9 विजेताओं में से एक विजेता घोषित किया गया। प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी का जन्म 1880 को आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कौसाम्बी का जन्म 1907 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक आशुतोष दास का निधन 1941 में हुआ था। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री

मुमताज का जन्म 1947 को हुआ था आज के दिन। 20वीं शताब्दी के भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन में विशेष योगदान देने वाले विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवेलकर का निधन आज के दिन 1968 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन आज के दिन 1980 को हुआ था।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा के सबसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जानते हैं उनके जीवन के बारे में। मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के सबसे महान और लोकप्रिय पार्श्व गायकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत से बहुत लगाव था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से प्राप्त की। मोहम्मद रफ़ी ने अपने गायन करियर की शुरुआत पंजाबी गीतों से की और बाद में हिंदी फिल्मों में अपनी अलग ही एक पहचान बनाई। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 7000 से अधिक गीत विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाए। उनके मधुर, भावपूर्ण और बहुमुखी आवाज के कारण उन्हें हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। उन्होंने नौशाद, शंकर, जयकिशन, ओपी नायर, सचिन देव बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कई प्रसिद्ध अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज़ दी थी। उनके कुछ प्रसिद्ध गीतों के बारे में अगर हम बात करें, जिनमें शामिल है चौधवी का चांद हो, बहारो फूल बरसाओ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, ये दुनिया ये महफिल, क्या हुआ तेरा वादा और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। उन्होंने चौधवी का चांद, कश्मीर की कली, आरजू, ब्रह्मचारी, दो बहन और हम किसी से कम नहीं जैसे अनेक सफल फिल्मों में अपने गीतों से अमित छाप छोड़ी। मोहम्मद रफ़ी जी को 1966 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुए और 1980 में मुंबई में आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई को उनका निधन हो गया। मोहम्मद रफ़ी केवल एक महान गायक ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर थे। उनके मधुर आवाज़ और सदाबहार गीत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी महान गायक मोहम्मद रफ़ी के बारे में और ये जानकारी आज के लिए बस इतना ही। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खाफलोंग केंद्र है।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म वेक अप सिड से कविता सेठ के आवाज़ में ये गीत FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, जिसे प्रस्तुत करेंगी अंकिता मिथरपांगसा।

0: दोस्तों, आज के मेरा गाँव मेरा गीत 2 मिनट कैप्सूल में हम आपको सुनवाएंगे माया देवी के आवाज़ में। उनके गाँव के बारे में जानेंगे, वो क्या सोचती है उनके गाँव के बारे में।
1: हमारा नाम माया देवी, हमारा गाँव का नाम मुलई बस्ती, और मुलई बस्ती में गाची उची भी ज़्यादा है, हवा हुआ भी अच्छा से लगता, गर्म भी इतना नहीं होता, और बगान उगन भी करता, मुर्गी उर्गी भी पाला, और हम लोग तीज भी

नमस्कार, आकाशवाणी हाफलॉन्ग केंद्र से महीने के आखिरी शुक्रवार को लेकर हाजिर हूँ मैं अंकिता मिथरफांगसा। प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट्स प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज पर आधारित ये खास कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओं, प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं पहलों को समाहित करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के समान अवसर प्राप्त हो सके और वे देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सके। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जैसे कि शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, मौजूदा और नई योजनाओं, स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य एवं केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना भी है। साथ ही अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना और सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण भी करना है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं। हालांकि अन्य सहभागी मंत्रालयों विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पहलों के व्यय और लक्ष्यों का 15% हिस्सा अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए ही आरक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अन्य सहभागी मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास संबंधी पहल भी शामिल है। श्रोताओं, इस प्रोग्राम के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और इसमें शामिल दूसरे मंत्रालयों द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं, वे कुछ इस प्रकार हैं: प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाएं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, मैट्रिक कम मीन्स आधारित स्कॉलरशिप योजना, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि NMDFC लोन योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना DNRLM, ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, वित्तीय सेवा विभाग, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वित्तीय सेवा विभाग, पोषण अभियान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम JJM यानी कि जल जीवन मिशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, पेयजल और स्वच्छता विभाग। ये योजनाएं सरकार के सैचुरेशन अप्रोच, संतृप्ति दृष्टिकोण के तहत संबंधित मंत्रालयों विभागों द्वारा लागू की जा रही है। सरकार के इस सैचुरेशन अप्रोच के तहत कई घटकों को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। श्रोताओं, आइए अब हम बात करते हैं भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख राष्ट्रीय व्यापी योजना के बारे में, जिसका नाम है पोषण अभियान। पोषण अभियान, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च साल 2018 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों में कुपोषण

और एनीमिया को कम करना है। मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य पोषण सुधार के बारे में अगर हम बात करें तो जन्म की शुरुआत से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। बौनापन घटाना यानी कि छोटे बच्चों में बौनापन और अल्प पोषण की समस्या को चरणबद्ध तरीके से कम करना इसका उद्देश्य है। जीवन के पहले 1000 दिन, गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल के होने तक के शुरुआती 1000 दिनों पर विशेष ध्यान देना इस योजना का उद्देश्य है। अभियान की मुख्य विशेषताएं प्रौद्योगिकी का उपयोग, पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों की डिजिटल निगरानी, साथ ही जन आंदोलन, इसे सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता अभियान के रूप में चलाना और पोषण माह और पोषण पखवाड़ा मनाना। हर साल सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह और मार्च अप्रैल में पोषण पखवाड़ा मनाना भी इस योजना के उद्देश्य में शामिल है। अब श्रोताओं, आइए हम इस योजना के बारे में विस्तार में जानते हैं। पोषण अभियान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पोषण मिशन है, जिसका उद्देश्य समन्वय प्रौद्योगिकी और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से पोषण परिणामों में सुधार करना है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग से अब इस मिशन के अंतर्गत 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों और लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों की लगभग वास्तविक समय में निगरानी करना संभव हो गया है। अपने जन आंदोलन के दृष्टिकोण के माध्यम से पोषण अभियान ने पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे पहलों के साथ देश भर में समुदायों को संगठित किया है, जिससे 150 करोड़ से भी अधिक की गतिविधियां उत्पन्न हुई हैं। 8 मार्च साल 2018 को शुरू किया गया पोषण अभियान प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना, भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्रों में पोषण को रखने के लिए एक प्रमुख बहु मंत्रालयी मिशन है। इस मिशन ने पोषण को केवल कल्याणकारी चिंता के रूप में देखने से हटकर इसे मानव पूंजी विकास, सतत विकास लक्ष्यों और दीर्घकालिक विकास से जुड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने की दिशा में भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। पिछले कुछ वर्षों में पोषण अभियान ने भारत की पोषण शासन संरचना को बदल दिया है। इसमें अभिसरण डिजिटल निगरानी और सामुदायिक लामबंदी को ढांचे में समाहित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया पोषण अभियान एक एकीकृत पोषण ढांचे के तहत 26 से अधिक मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाता है, ये मानते हुए कि कुपोषण का समाधान केवल स्वास्थ्य या खाद्य क्षेत्र से नहीं किया जा सकता, इसके लिए स्वच्छता, शिक्षा, जल, महिला सशक्तिकरण और आय पर एक साथ कार्रवाई की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पोषण अभियान को जीवन चक्र और निवारक दृष्टिकोण पर केंद्रित किया गया है, न कि केवल कुपोषण होने के बाद उसके उपचार पर। ये मिशन गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के पहले 1000 दिनों पर विशेष जोर देता है, क्योंकि ये अवधि शारीरिक विकास, मस्तिष्क विकास और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। कई दशकों तक भारत में पोषण संबंधी हस्तक्षेप विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न समूहों को लक्षित करते हुए अनेक योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए गए। यद्यपि इनमें पोषण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था, फिर भी दृष्टिकोण काफी हद तक क्षेत्र विशिष्ट ही रहा। समय के साथ समन्वय और समन्वित कार्यान्वयन की आवश्यकता को पहचाना गया। सन 1975 में शुरू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण स्वास्थ्य सेवाओं और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए आधारभूत मंच प्रदान किया। माँ का स्वास्थ्य उसके बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए साल 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY लागू की गई। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से मातृत्व लाभ शुरू किए गए, जिससे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय

सहायता प्रदान की गई। उसी वर्ष नीति आयोग की राष्ट्रीय पोषण रणनीति साल 2017 ने समन्वय, बेहतर निगरानी और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया और मिशन आधारित दृष्टिकोण की सिफारिश की। इसी आधार पर पोषण अभियान को साल 2018 में भारत के राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य समयबद्ध लक्ष्यों, डिजिटल निगरानी और जन आंदोलन के दृष्टिकोण के साथ कई मंत्रालयों और योजनाओं को एकीकृत ढांचे के तहत लाना था। केंद्रीय बजट 2021 से 22 ने मिशन पोषण 2.0, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत भारत की खंडित पोषण पहलों को और अधिक समेकित करते हुए एक एकीकृत ढांचा तैयार किया। इस पुनर्गठन में कुछ योजनाएं शामिल की गई, जैसे कि आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना, पोषण अभियान। इस समेकन से मातृ पोषण, शिशु एवं शिशु पोषण, IYCF, मानदंड और गंभीर तीव्र कुपोषण यानी कि सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, मध्यम तीव्र कुपोषण, इसके उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही इसमें आयुष आधारित पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर जोर दिया गया, ताकि दुर्बलता, बौनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। मिशन का पुनर्गठन किया गया और प्राथमिक क्षेत्रों के माध्यम से संचालित किया गया, जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी सहायता, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा 3 से 6 वर्ष और प्रारंभिक प्रोत्साहन शुरुआत से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी अवसंरचना जिसमें केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नत करना शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम साल 2013 की अनुसूची 2 में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी साल 2023 में संशोधित किया गया था। पुराने मानदंड मुख्य रूप से कैलोरी विशिष्ट थे, हालांकि संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित है, जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व, कैल्शियम, जस्ता, लोहा, आहार फोलेट, विटामिन B6 और विटामिन B12 का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम साल 2013 NFSF, इसके अनुसार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों और ग्राम पंचायत की जमीनों पर पोषण वाटिकाएं या पोषक उद्यान स्थापित किए जा रहे हैं। इस पहल से आहार में विविधता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक भोजन के सेवन को बढ़ावा मिल रहा है। ये उद्यान फल, सब्जियां और औषधीय पौधे आसानी से और किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन करना और इससे संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है। इस प्रोटोकॉल के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक सहायता गतिविधियों के दौरान बच्चों के विकास की निगरानी और जांच करती है। गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों को चिकित्सा मूल्यांकन और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों और पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाता है। जिन बच्चों में कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होती, उनका घर पर ही पौष्टिक, स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन और सहायक चिकित्सा देखभाल के साथ पालन पोषण किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में 6 महीने से 6 साल तक के उन बच्चों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया शामिल है जिन्हें गंभीर रूप से कुपोषित, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन या बेहद कम वजन वाला पाया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद चिकित्सीय जटिलताओं वाले बच्चों को आगे के उपचार और देखभाल के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र या अस्पताल में भेजा जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पोषण भी पढ़ाई भी ये पहल शुरू की। इस पहल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण और प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सुसज्जित किया जाएगा। ये पहल राष्ट्रीय ECC नीति साल 2013 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति साल 2020
के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECC संबंधी

बारिशों के अनुरूप है। पोषण प्रशासन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पोषण ट्रैकर के बारे में हम बात करेंगे। श्रोताओं, 1 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया पोषण ट्रैकर बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण की निगरानी के लिए प्राथमिक प्रशासनिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये पोषण ट्रैकर, इस एप्लीकेशन ने आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लगभग वास्तविक समय में डेटा संग्रह को सुगम बनाया है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, ECC गतिविधियां और विकास निगरानी शामिल है। वर्तमान में ये प्रणाली गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 6 वर्ष तक के बच्चों और किशोरियों के समूह की निगरानी करती है। इस साल के मार्च 2026 तक मिशन लगभग 14,03,170 आंगनवाड़ी केंद्रों और लगभग 8,95,29,425 पात्र लाभार्थियों पर नजर रखता है। लोक प्रशासन में अपने नवोन्मेषी योगदान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया था। मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर नामक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिससे मंत्रालय और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति सहित विभिन्न मानदंडों पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने में मदद मिली है। सेवा वितरण के अंतिम चरण की ट्रैकिंग के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली शुरू की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल एप्लीकेशन में पंजीकृत इच्छित लाभार्थियों को ही मिले। आधार आधारित ट्रैकिंग से लाभार्थियों की सही पहचान संभव हो पाई है, डेटा लीक को रोका जा सका है और फर्जी प्रविष्टियों को समाप्त किया जा सका है। इस तकनीकी एकीकरण ने ये सुनिश्चित किया है कि कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण या अन्य संबंधित सेवाओं की आपूर्ति में कोई कमी या देरी ना हो। सुलभ शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। पोषण हेल्पलाइन 1-4-4-0-8, इसके माध्यम से लाभार्थी अपनी चिंताओं को दर्ज करा सकते थे। इस हेल्पलाइन के जरिए लाभार्थी दी जा रही सेवाओं से संबंधित अपनी चिंताएं बता सकते हैं। ये हेल्पलाइन 17 भाषाओं में उपलब्ध है। पहली वाली हेल्पलाइन 1-4-4-0-8 को बंद कर दिया गया है। अब नवंबर 2025 से पोषण अभियान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY से संबंधित शिकायतों प्रश्नों के लिए 1515 ये नंबर सक्रिय बन गया है, जो अभी चल रहा है। इस योजना में सामुदायिक सहभागिता भी है, यानी कि जन आंदोलन के रूप में इसे माना गया है। पोषण अभियान की सबसे विशिष्ट विशेषता ये है कि ये पोषण सुधार को एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित करता है, एक वास्तविक जन आंदोलन के रूप में, न कि सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम के रूप में। ये मिशन मानता है कि शिशु पोषण प्रथाओं, आहार विविधता, प्रसव पूर्व देखभाल, हाथ की स्वच्छता और संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में स्थायी व्यवहारिक परिवर्तन केवल सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और जमीनी स्तर पर सहभागिता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा पोषण केंद्रित सबसे बड़े सामुदायिक लामबंदी अभियानों में से है, और इन्हें निर्धारित महीनों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ताकि जन समुदाय तक पहुंचकर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। श्रोताओं, बात करते हैं हम पोषण पखवाड़ा के बारे में। साल 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला पोषण पखवाड़ा पोषण अभियान के तहत सामुदायिक लामबंदी को मजबूत करने और प्रमुख पोषण व्यवहारों को सुदृढ़ करने के लिए अप्रैल में आयोजित किया जाने वाला 2 सप्ताह का गहन जागरूकता अभियान है। पोषण पखवाड़ा का 8वां संस्करण साल 2026 में, यानी कि इसी साल 9 से 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि मस्तिष्क का 85% से भी अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, जिसमें सबसे तीव्र वृद्धि पहले 1000 दिनों के दौरान होती है, जो मस्तिष्क के इष्टतम विकास, शारीरिक विकास और समग्र कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। जीवन के प्रारंभिक चरण में बच्चों की देखभाल और पोषण के महत्व को पहचानते हुए 8वां पोषण पखवाड़ा जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना जैसे वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण और परिवर्तन

जानकारी विषय पर ध्यान केंद्रित करके जन आंदोलन को और गहरा करने और स्वस्थ विकास और मस्तिष्क के विकास में सहायक प्रथाओं के बारे में परिवारों और समुदायों के बीच जागरूकता को मजबूत करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए पोषण की अवधारणा को इष्टतम मस्तिष्क विकास के लिए पोषण और प्रारंभिक बचपन में उत्तेजना की ओर मोड़ना है, जिसके लिए केंद्रीय विषय है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना। इस वर्ष की जो थीम थी और जो प्रमुख फोकस क्षेत्र थे वो थे माँ और शिशु का पोषण, मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा, स्क्रीन टाइम को कम करने में माता पिता और समुदाय की भूमिका, मजबूत आंगनवाड़ी के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाना। 7वें पोषण पखवाड़े 8 से 26 अप्रैल 2025 में 4 परिणाम उन्मुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। जीवन के पहले 1000 दिन, स्व पंजीकरण के लिए पोषण ट्रैकर, लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार, कुपोषण के सामुदायिक आधारित प्रबंधन प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन और बचपन के मोटापे से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। देश भर में कई तरह की गतिविधियां चलाई गई, जिनमें घर घर जाकर लोगों से मिलना, विकास निगरानी अभियान, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, नुक्कड़ नाटक यानी कि स्ट्रीट प्ले और कई मंत्रालयों और विभागों को शामिल करने वाले समन्वय कार्यक्रम शामिल थे। पोषण पखवाड़ा जमीनी स्तर पर भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता रहा है, जो आंगनवाड़ी नेटवर्क और सामुदायिक संस्थानों का लाभ उठाकर स्थायी व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है और पोषण सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी को मजबूत करता है। राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में अगर हम बात करें तो पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पोषण माह को हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में मनाया जाता है। ये अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सहयोगी मंत्रालयों के समन्वय से चलाया जाता है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2025 पिछले साल मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के साथ किया गया था। इस पहल का संयुक्त रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। पोषण माह का मुख्य उद्देश्य पोषण साक्षरता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसमें मातृ पोषण, शिशु एवं शिशु पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ECC और मोटापे से निपटने के लिए चीनी और तेल की खपत में कमी जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। पोषण अभियान के 8 वर्ष पूरे होने पर ये मिशन पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने में समन्वय, प्रौद्योगिकी आधारित शासन और सामुदायिक भागीदारी पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। कार्यक्रम का विकास विभिन्न क्षेत्र में समन्वित कार्रवाई, सशक्त सेवा वितरण मंचों और निरंतर व्यवहार परिवर्तन प्रयासों के महत्व को पोषण परिणामों में सुधार लाने में प्रदर्शित करता है। मिशन पोषण 2.0 की ओर संक्रमण सेवा की गुणवत्ता में सुधार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के विस्तार और अंतिम छोर तक वितरण प्रणालियों को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है। पोषण को स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के साथ एकीकृत करके ये मिशन कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। पोषण देश में मानव पूंजी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेहतर पोषण से बेहतर स्वास्थ्य, सीखने के बेहतर परिणाम और उत्पादकता प्राप्त होती है। भारत 2047 तक एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में स्वस्थ, उत्पादक और सशक्त आबादी के निर्माण के लिए पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और सेवा वितरण प्रणालियों में निरंतर निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। श्रोताओं, ये था आज का हमारा PM 15 प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज पर आधारित कार्यक्रम। अगले महीने के आखिरी शुक्रवार को एक और नए विषय के साथ
हम

0: दोस्तों आप सुन रहे थे पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़, जिसे प्रस्तुत किया था अंकिता मेथर पांगसा ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: दोस्तों, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात

0: अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान, मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा

0: का गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
1: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदेब जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
2: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा

0: टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं, असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे देशभक्ति गीत का कार्यक्रम।

दोस्तों, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत का कार्यक्रम, और इसी गीत के साथ ही ये कार्यक्रम आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

दोस्तों, अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। और आज के सुरों की रंगोली कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अलीशा चिनाई के गाए हुए कुछ बेहतरीन और शानदार गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। और आज के सुरों की रंगोली कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया अलीशा चिनाई के गाए हुए कुछ बेहतरीन और शानदार गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे आंचलिक बातोरी।

आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत खिलमा भक्ति गीत का कलाकार ललथांगपोई जेते और उनके साथियों की आवाजों में। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुनेंगे रांगखोल भक्ति गीत का कलाकार लल नेई लोम रांगखोल और उनके साथियों की आवाजों में।

दोस्तों, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत रांगखोल भक्ति गीत का कलाकार लल नीलम रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत अभी आप सुनेंगे जयंतिया भक्ति गीत का कलाकार जॉन और उनके साथियों से।

आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत जयंतिया भक्ति गीत गायक कलाकार जॉन और उनके साथियों की आवाज़ों में। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में अभी आप सुनेंगे बीते आधुनिक गीत गायक कलाकार जीरे लालरिन मामी बीते और उनके साथियों की आवाज़ों में।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत बीते आधुनिक गीत का कलाकार जिलेलाल रिन मामी बीते और उनके साथियों के आवाज़ों में। और इसी के साथ ही स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों को ले चलती हूँ आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहाँ से आप विविध भारतीय कार्यक्रमों का आनंद ले पाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे सर।
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है बड़ोदिया बल्लर और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ जब हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते है?
1: सर खेती अपने यहाँ होती है थोड़ा इनकी।
0: नदी अद्दी कोई?
1: नदी नहीं दिखी यहाँ पे सर।
0: तलाव?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बहे थे कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर अपने गांव में नहीं, पर दूर पे तलाव थे यहाँ से।
0: हो बाकी का हालचाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना है आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी,
1: सर आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था, सर आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया। आज क्या गाना सुनाने
1: जी
0: वाले हैं बताइए।
1: जी मैं आज सुनाता हूँ

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, अब मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से

0: कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइशें आती
1: नहीं
0: हैं।
1: सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी। जी
0: लेकिन नाम एक
1: सर,
0: ही है।
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो
1: जी सर
0: बताइए
1: जी,
0: क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियां
1: हाँ
0: चल रही
1: अभी
0: हैं?
1: धान का रोपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़।
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़ जी
0: किस किस
1: में।
0: तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर। सर
0: बताइए जी, क्या हालचाल है?
1: ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर।
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल भाई कर
0: अच्छा
1: रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी आज। तो आपके शो सुनते हैं सभी, अब
0: जी
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए, कितने सारे श्रोता फोन करते हैं लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत
1: हाँ जी
0: सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश
1: हाँ जी हाँ
0: नसीबों में
1: जी।
0: से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सचिन का नाम है डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी,
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी
1: हाँ
0: के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या-क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते। फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर। मैं
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी देंगे सर, अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागन सा रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: गगन को डोर समझ रहा है? ना का मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना है।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई, कैसे हैं आप।
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त।
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और
1: जी
0: अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है।
1: हाँ, आज धूप भी है।
0: कश्मीर में
1: हाँ जी,
0: बारिश का मौसम किन महीनों में होता है।
1: लगभग ये

0: हर महीने होता है।
1: हर महीने होता है,
0: बीच में होते हैं।
1: सोनमर्ग तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
0: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
1: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
0: वो जाती है लेह लद्दाख की।
1: जी जी, आप गए हैं उस तरफ?
0: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
1: अच्छा, लेह लद्दाख
0: हाँ
1: जाने
0: जी,
1: के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए?
0: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग एक दिन और एक रात लग जाता है लेह में जाने में।
1: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
0: हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
1: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
0: हाँ सर,
1: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
0: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके से जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूं।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहां से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो

0: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बरसे, बिजली चमक जिया डरात बादल रे। ये सब सीखा है
1: वाह
0: मतलब।
1: वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी सर। सर
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से, पृथ्वीराज
0: जी बोलिए बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है सर।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो

0: क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: ये टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर। देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे
1: जी
0: किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिन
0: नवंबर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
1: का वक्त वही सर, 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12
1: जी
0: में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर, उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको
1: जी
0: सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर, यहाँ तो सबसे अच्छा दस बांधवगढ़ का एरिया है सर, उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर, और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
0: मोर! अरे वाह
1: जी
0: वाह
1: जी जी
0: वाह, बहुत ही बढ़िया। यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
1: प्रकृति का संदार है सर यहाँ
0: और आपका काम क्या है भाई
1: सर, हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
0: उस इलाके में?
1: जी जी जी
0: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
1: जी जी
0: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना, ज्ञान, मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी के अंदर शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं, और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले, ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई। खैर
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, इसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है। बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते, फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: हाँ
0: मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो
1: जी,
0: टूरिस्ट वहां आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इसे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये बेचेगा तो वो सही होना चाहिए।
0: जी। और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं इसमें, मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाले छोटे वाले पूर्व मतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पूर्व मतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हम बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
0: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से?
1: दिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर, बादल
0: बारिश
1: छा रहे
0: बारिश?
1: हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर। बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम सर, से मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?

0: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर पिकनिक मनाने लोग गए थे।
1: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
0: जी सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
1: क्या बात,
0: मालूम नहीं कहाँ है मंजिल।
1: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
0: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
1: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं। एक है

0: 0222867 0288 यानी 02-2867-02-88। दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002466 यानी 02240024662। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रंग तरंग ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

शंकर, शंभू, अमर कुमार और साथियों की आवाजें थीं, शायद ध्यानवी के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर की आवाज़ में ये दादरा आप सुन रहे थे, और इसके पहले श्रोताओं हमने आपको लैला मजनू फिल्म की कवाली सुनवाई थी। उसमें संगीत था मदन मोहन का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

एक पल इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर, भूपेंद्र हजारिका और भूपेंद्र हेमंती की आवाजों में गुलजार के बोल थे, भूपेंद्र हजारिका की तर्ज थी।

जफर, गोरखपुरी का कलाम आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। एल्बम तस्कीन, छाया गांगुली की आवाज, पयाम सईदी के बोल।

तस्कीन एल्बम का ये गीत था छाया गांगुली की आवाज में, पयाम सईदी का कलाम था, मधुरानी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से ये गीत उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। संदेश शांडिल्य की तर्ज थी। संदेश शांडिल्य का लिखा ये गीत था श्रोताओं।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी

ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी

0: जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का।

ये फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है श्रोताओ इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। मोहम्मद रफ़ी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें ज़रूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओ बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण ठाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक श्रृंगार रस से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें 16 मात्राओं में ताल जो है वो बंधी हुई है, यानी त्रिताल की बात हम कर रहे हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी के कौशल को अगर देखें तो जिस परफेक्शन के साथ उनका आलाप, ताल, तान और सरगम का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक बड़ी ही उच्च कोटि की शास्त्रीय गायकी क्षमता को दर्शाता है। गाने की शुरुआत में आपने मनमोहक जो आलाप सुना वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, और बीच में जो पखावज तबले के बोलों और शास्त्रीय तराने का मिश्रण इस रचना को बड़ा ही दुर्लभ बनाता है, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने पूरी शिद्दत और सटीकता के साथ निभाया है। और यही कुछ वजहें हैं कि जिससे मोहम्मद रफ़ी हम सबके दिलों में बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी ऐसी ही थी। जब रफ़ी साहब गाते थे तो लगता था जैसे कोई सीधे दिल से बात कर रहा हो। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, दुआ भी, प्रेम भी और भक्ति भी। रफ़ी साहब एक गायक नहीं, एक एहसास थे, और एहसास कभी मरते नहीं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़र करते रहते हैं, बिल्कुल उनके अमर गीतों की तरह। आज रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन किया है और हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी की खूबियों को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी भी मूड में हो, मोहम्मद रफ़ी के गाने हमें सुकून देते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कब आप मोहम्मद रफ़ी के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीत गम में भी हमारे साथी हैं और खुशी में भी। कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं ये आप हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन सुख के सब साथी फिल्म गोपी का इन्होंने याद किया है, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वो जादुई आवाज़, सांसों का सरगम, जिन्हें प्रभु की अपार कृपा से भक्तिभावपूर्ण भजनों की माला पहनाई गई हो, बड़ी शिद्दत से तराशा कोहिनूर रहे रफ़ी साहब को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा दावर पैदा। आपको ये फिल्म पहचाननी है।

फिल्म सूरज का ये गीत था, आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ, हसर जयपुरी कृष्णा थी। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में राग शिवरंजनी का प्रभाव इस गीत में नजर आता है। एक बहुत ही सुंदर, संवेदनशील और रोमांटिक प्राकृतिक राग है ये श्रोताओ, जो दिल के तारों को झकझोर देता है। इस राग में अगर आप ध्यान देंगे तो सारे ग प ध स्वर लगते हैं। रफी साहब ने इस राग की कोमलता और ठहरी हुई मिठास को अपनी आवाज में जिस तरह से उतारा, वो रूह को छू लेती है। और अगर इस गीत के आरोह अवरोह के फैलाव की बात करें तो बहारों फूल बरसाओ की जो उठान सीधे मध्यम और उच्च स्वर के सहज सफर के साथ होती है, जो सुनने वालों के मन में उल्लास भर देती है। गले की लोच की बात क्या कहें कि शब्दों का उच्चारण के जो साथ साथ मींद यानी सुरीला खिंचाव और गमक का प्रयोग इस गीत में किया गया, उसे ये शास्त्रीय दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट रचना बन पड़ी है। बिना किसी अतिरिक्त आप देखेंगे कि भारीपन और बनावट के, केवल भावनाओं की गहराई से इस राग को जीवंत किया है मोहम्मद रफी साहब ने। तो ये गीत आप सुन रहे थे और उनकी याद हम ताजा कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गुल बलोच फिल्म की बात की है। जी हाँ, ये फिल्म थी और जो पहला रिकॉर्डेड गीत था सोनिए नी हीरिए नी, ये गीत था जो मोहम्मद रफी जी ने गुनगुनाया और ये रिकॉर्ड बन पड़ा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के संगीत के कोहिनूर हैं मोहम्मद रफी जी, जिसकी आवाज एक अलग अंदाज बनकर हम सभी संगीत प्रेमियों के दिल में बस गई। हम जब भी मोहम्मद रफी जी का कोई दर्द भरा गीत सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और ये उस जादुई आवाज का करिश्मा जो शायद ही दूसरे कोई गायकों में ऐसी काबिलियत होगी। ऐसे महान और दिग्गज गायक मोहम्मद रफी जी को विनम्र नमन। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है। एक और श्रोता लिखती है कि इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम रूहानी आवाज के दौर में जन्म हमने लिया है, वो आवाज जो हर किसी को हर तरह के गानों में सुकून देती है, तो आज भी मिसाल गाने सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, यूं तो बहुत सफर किए हमने, हर राह से कुछ सिखाया है, पर विविध भारती का सुरीला सफर दिल के सबसे करीब आया है, तो मिलते हैं। और एक और श्रोता लिखती हैं कि ब्रज में होली खेलत नंदलाल, रवि साहब ने इस गीत में गजब का उत्साह और उमंग भरा है। शुरुआत में पारंपरिक जोगीरा सारा लारा की गूंज और उसके बाद रफी के खुले गले से निकला स्वर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देता है। और इस गीत को पहचानिए, कौन है अदाकार?

फिल्म ससुराल का ये गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण ठाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण आप सुन सकते हैं इस गीत में। राग यमन की वैसे जो प्रकृति होती है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। अगर मोहम्मद रफी साहब की बात करें तो जो शुरुआती ऊपर सप्तक उन्होंने लगाए, यानी सास स्वर से बेहद कोमलता और नजाकत के साथ की है उन्होंने शुरुआत। गीत के बोल तेरी प्यारी प्यारी सूरत को में उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज की मिठास, ठहराव, मुर्कियां, ये सभी इस्तेमाल किए हैं, वो हमारे दिलों में उतर जाता है। भाव और अवरोह की अगर बात करें, उतार चढ़ाव की बात करें, तो सुरीले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीत में नजर आता है, जिसके साथ रफी साहब की जो अलगाकारी है स्वर संवाद करता है। ये गीत अंतरिम में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार और अदायगी का अंदाज है वो इतना सहज है कि तकनीकी रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। तो भला बताइए कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं? यही है कि हम सब मोहम्मद रफी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारी जिंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अपितु स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफी साहब के राग रंगों से सजी सफर का इंतजार है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सफर तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी को समर्पित लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ, ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं।

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसाद में धकेलने लगे तो कहीं दूर रेडियो से आती रवि जी की आवाज का ये गीत मन रे तो काहे न धीर धरे बजने लगता है तो मन अनायास ही दुख को भूलकर आगे जाने की उम्मीद से सराबोर हो उठता है। रफी साहब की आवाज ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया, मगर आज भी वो आवाज हमारी सुबह को हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती, उनकी आवाज जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे जो ग्रामाफोन पर बजते थे उनकी जो यादें थी वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, यानी हम बात कर रहे हैं रफी साहब के गीतों के कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो, और इन्होंने मोहम्मद रफी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओ, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों

0: से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ।
1: जॉय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार बताने हैं। ये गीत जो आधारित था राग मिश्र भैरवी या दादरा अंग की खुशबू से सजा हुआ ये गीत हम कह सकते हैं। वैसे रफी साहब की आवाज़ जो है इसमें एक इस गीत में अनोखी तड़प और नरमी नजर आती है और जो एक फुसफुसाहट सी रूमानी एहसास लिए जो रफी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गजब का है श्रोताओं, जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है, उसी की हम बात कर

कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज है जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनकी जो जब उनकी पुण्यतिथि यानी कि जब आती है तो याद आता है कि रेडियो पर ये सुनाई दिया कि मोहम्मद रफी साहब नहीं रहे, तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसकी यादों को उन्होंने ताज़ा किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफी जी। उनकी आवाज़ में प्रेम की कोमलता, भक्ति की पवित्रता, देशभक्ति का जोश था, दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिलाहट भी। वे जिस अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों, यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज जो है आपको किस अभिनेता पर खास जचती हुई नजर आती है और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया फिल्माया गया वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। खासकर हम बात करें महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की। तो

अल्फोंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींड का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इससे नजर आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कोहिनूर सा नगमा बन पड़ा है। अगले गीत में आपको पहचानना है कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन है।

रफी साहब के कोई रिकॉर्ड्स क्या अभी आपने संभाल रखे हैं श्रोताओं, तो आप हमें बता सकते हैं। काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये एक, मोहम्मद रफी ने अपने जादुई आवाज का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफी साहब की अगर आवाज को आप सुनेंगे तो गजल नुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है, जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहनशाह मोहम्मद रफी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूंगा और यही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हों तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है मानो हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफी जी की अमर आवाज की झलक समाई हो। आ जा रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे, जैसे गाने भी उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था। उन्होंने इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक पढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी, और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियां थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी, और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं, विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं है। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तारिक और काजल, किरण पर फिल्माया गया। जो नजर आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं। रफी साहब की आवाज हमें अच्छी लगती है शमी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शमी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा, वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ एक इस तरह से डिटेल लिखी है कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा इन्होंने, और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज्यादातर कि रफी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री मुमताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओ, और ये जो गीत है वो उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप बताएं कि ये खासी ड्रेस किसने डिजाइन की है।

शमी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी साहब के। वैसे श्रोताओं, बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नजर करते हैं मोहम्मद रफी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो तो आप हमसे जरूर बता सकते हैं।

0: दिल।
1: श्रोताओं आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे मिड डे न्यूज, उसके तुरंत बाद यानी कि दोपहर 2:15 पर दोपहर समाचार।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines.

0: लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
5: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: करते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परम्पराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँवों को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए मिड डे न्यूज, उसके तुरंत बाद दोपहर समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अफलम केंद्र है। आइए आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: संगीतकार रवि का सुविध किया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा शरीर के डोले मनवा कि हियारा में उठे तहिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा।

नौशाद की तरस थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में मदर इंडिया फिल्म का गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: ये रास्ते हैं प्यार के, सुन कगीता मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुर में ढाला रवि ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे इस गीत के साथ ही अब संपन्न होता है आज के इस कार्यक्रम में। हमने आपको सुनवाए सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी के गाए चुनिंदा नगमे। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
0: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली
1: जी। हेलो सहेली
0: नमस्ते।
1: जी। नमस्ते मैम।
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ
0: जी। क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, दो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ, और ये चलते ही रहता है, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए, आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है, या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाने लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अपना शौक एक हमें रखना चाहिए, जिसके कारण हमें जीवन
1: जी
0: में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, ये सखी सहेली ये सुनती रहती है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ, और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है,
0: जी
1: निर्भर
0: जी
1: रहता है।
0: यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
1: जी
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी।
0: सत श्री अकाल। बताइए कौन सी
1: हाँ
0: सहेली ने
1: जी, हम
0: फोन लगाया
1: दीदी
0: है।
1: पंजाब से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, लुधियाना जिले से
0: अपना नाम बताइए।
1: जी। रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी,
1: हाँ जी
0: बताइए क्या करती हैं आप।
1: जी मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, और
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: बताइए कि आपके शौक क्या-क्या हैं।
1: जी शौक तो यही है जी। मैं तो ज्यादातर जी घर में यही कपड़े सिलाई करती हूँ। यही मेरा शौक है जी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं?
1: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट।
0: जी, और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते। वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: जी। रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है। मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेली से, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है, फौजियों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: जी, तो बताइए
1: हाँ
0: कौन सा
1: जी,
0: गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ
0: रितु राजपूत। कहाँ से फोन लगाया है
1: मैम। ग्राम त्रायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ
0: बताइए। रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम। घर पर रहकर काम करते हैं।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम, है एक दो लोग हैं
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम। हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहते हैं मैम।
0: जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली, किसने
1: हेलो सहेली
0: फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको जी। बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं।
1: जी हाँ,
0: जी, अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
0: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए, अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
1: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होती है। अभी रुकी हुई है लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
0: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश
1: जी
0: ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं, और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी
1: जी
0: बात आपने कही। और बताइए, रेडियो कब सुनती हैं? कौन-कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरी शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद भी छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजबीये नागपुर से बोल रही हूँ मैम। जिंदगी
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ, खुद
0: अच्छा
1: का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए संगीत से दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है वो गीत, जाएंगे हम मासूम।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से। मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी, जी बताइए
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ मैं।
0: शॉल बनाती हैं जी,
1: हाँ
0: शॉल की बुनाई करती हैं
1: हाँ
0: जी।
1: दीदी,
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ
0: जी, चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी। मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है
1: हाँ दीदी,
0: जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ। मैं बैतूल जिले से, मध्य
0: जी प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी,
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ।

0: शांति है, हर तरीके लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
1: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
1: जी घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से।
0: जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में।
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी
1: हाँ
0: हुई हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेश।

0: रहती है सबकी। सब
1: जी शुक्रिया।
0: प्रोग्राम सुनती हूँ मैं, सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
1: अरे वाह,
0: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
1: यानी आपने रेडियो से दोस्ती कर ली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम।
1: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
0: बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे, तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, तो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
1: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
1: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी,
1: जी
0: कि इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं, वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त तो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं,
0: जी
1: है ना? लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
0: जी
1: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
0: जी
1: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख दुख बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
0: जी यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपका दिन का बिल्ला है, उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
1: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
0: जी
1: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली।
0: जी तो हम
1: बहुत
0: सभी
1: ही
0: को
1: प्यार,
0: ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं, बेचारे भूखे होते हैं, तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
0: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप
1: जी। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: जी? मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती है
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात
1: जी।
0: बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: हाँ जी, मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ
0: जी, मासूम फिल्म का गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानि 400-24662। दूसरा नंबर है 28670-288 यानि 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानि 022। चलते चलते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।
2: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
4: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
3: लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। सरकार ने कहा है कि विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक यात्राओं के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूह के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल नवाचार मिशन के जमीनी स्तर के नव प्रवर्तकों के एक समूह से बातचीत की। उन्होंने एक प्रदर्शनी में उनके नवाचारों का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि जमीनी स्तर के नवाचार समाज की जरूरतों के लिए उपयुक्त हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज एक सहायक उप निरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई।
5: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
3: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने आज सुबह दुर्घटना स्थल का दौरा किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मोपे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा, और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा, और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और 1 हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं। और एक हम दोनों बिल्कुल मिस मैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ न कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह, और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच, इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन

हुए आलोक बोले, अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा? और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है। एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ, हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ। सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या? छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें? सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ

मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? उफ़ो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

0: है बॉम्बे मेरी जान।
1: ए ताई, दादर उतराए से तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंद की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी कार्यक्रम के साथ ही आज की पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज शाम 6 बजे से आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आरंभ किया जाएगा। तब तक के लिए मैं मीना लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय शाम के 6:22 हो चुके हैं। हमारे स्टूडियो में मैं हूँ मेलेडी। आज की दूसरी सभा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ।

तो श्रोताओं, आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। शुरू करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम से। सबसे पहले 6:05 पर आप सुन पाएंगे मार्ग कार्यक्रम में आधुनिक गीत ललबिक नोंग तुलर और उनके साथियों की आवाज में। 6:25 पर आप सुनेंगे जेमे कार्यक्रम में लोकगीत तिंगवांग स्विंग क्वामे और उनके साथियों की आवाज में।

6:45 रहेगा संध्यार आंचलिक बातोरी का। 7 बजे आप सुनेंगे दिमासा कार्यक्रम में आधुनिक गीत प्रदीप हाफलोंग बार और उनके साथियों की आवाज़ में। 7:20 पर आप सुन पाएंगे गरबी कार्यक्रम में आधुनिक गीत लोंगनियर जेंग तेरांग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, 7:40 पर आप सुनेंगे कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत सिंगनेवा चोंगलोय और उनके साथियों की आवाज में। 8 बजे का समय रहेगा इंडिया ऑफ माय ड्रीम कार्यक्रम का। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे का समय रहेगा बांग्ला गीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र गीत कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

तो चलिए श्रोताओं, समय हो गया है आज के पहले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को शुरू करते हुए सुनते हैं मान कार्यक्रम में आधुनिक गीत ललबीग नोंग तोलर और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम में आधुनिक गीत ललबीकनुंग तुलर और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। समय हो गया है जेमे कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। इस कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं लोकगीत तिंग वांग स्विंग ख्वामे और उनके साथियों की आवाज़ में।

0: श्रोता, अभी आप जिमे कार्यक्रम में सुन रहे थे लोकगीत तिंगवांग सुइंग क्वामे और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संध्यार आंचलिक पातरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশত যি সৌৰ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল তাৰ প্ৰভাৱ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভাৰতত এতিয়ালৈকে 30 লাখতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ ছাদত ছলাৰ পেনেল লগোৱা হৈছে। আপুনিও এই শক্তি বিপ্লৱৰ অংশীদাৰ হওক। PM সূৰ্য ঘৰ মুফ বিজুলী যোজনা যোগদান কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰক PM সূৰ্য ঘৰ .gov.in।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे असमिया में समाचार आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। अब समय हो चला है अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। सुनते हैं दिमाशा कार्यक्रम में आधुनिक गीत प्रदीप हाफलोंगबार और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिमासा कार्यक्रम में आधुनिक गीत, प्रदीप हाफलोंगबार और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ दिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है करबी कार्यक्रम का। सुनते हैं आधुनिक गीत लोंगनीर जंग तेरांग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गरबी कार्यक्रम में आधुनिक गीत लोंगनीर जंग तेरांग और उनके साथियों की आवाज में। इसी के साथ गरबी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो चला है कुकी कार्यक्रम का। सुनते हैं भक्ति गीत

0: श्रोताओं, आप हमें आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कुकी कार्यक्रम में भक्ति गीत लिंगनेवा चोंगलोई और उनके साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ आज का स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब समय हो गया है अगले कार्यक्रम के ओर बढ़ने का, जो है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त जिदित। आज मैं लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम मेरे सपनों का भारत। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए उपस्थित है एक बहुत ही खास मेहमान, मिस्टर राजीव थापा। आप हैं एक रिटायर्ड नेवी, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ था?
2: मेरा स्कूलिंग हुआ है हाफलोंग में ही, नाजरत मॉडल हाई स्कूल
1: जी,
2: मूलोई में। वहाँ से फिर टेंथ ख़त्म होने के बाद मैं हायर सेकेंडरी किया जीसी कॉलेज सिलचर
1: जी।
2: हायर सेकेंडरी के बाद फिर मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया
1: जी। अच्छा, आपका नेवी का सफ़र कैसा रहा?
2: अगर मानो तो मैंने जो भी आज तक सीखा है, एक्सपीरियंस किया है इंडियन नेवी के थ्रू से है
1: जी।
2: इंडियन नेवी ने बहुत कुछ सिखाया जीवन का। अभी तक का जो इम्पोर्टेंट सीख रहा है, सफ़र रहा है स्कूल के बाद सीधा इंडियन नेवी
1: जी,
2: तो इंडियन नेवी में सीखने

0: को बहुत कुछ मिला है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने देश के बारे में, या दूसरा कम्युनिटी लिविंग के बारे में हो, एक डिसिप्लिन लाइफ के बारे में हो, मतलब बहुत कुछ सीखा है नेवी में।
1: आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा नेवी में जाके?
0: मेरा तो शुरुआती दिनों से ही चुनौती था नेवी में,
1: जी
0: क्योंकि नेवी ज्वाइन करने से पहले मेरा लाइफस्टाइल ऐसा था कि जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है,
1: जी
0: पढ़ाई किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, आ गए, इतना स्पोर्ट्स वगैरह में इतना एक्टिव नहीं थे,
1: जी
0: और एथलेटिज्म था ही नहीं मतलब, और ऐसा कोई एम भी नहीं था कि फ्यूचर में जाके डिफेंस ज्वाइन करना है।
1: जी
0: एक होता है ना कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, प्रिपेयर रहते हो, तो ऐसा था नहीं। तो जब नेवी में सेलेक्ट हो गया और जब मैं मतलब ट्रेनिंग के लिए पहुंचा, तब रियलाइज़ हुआ है कि मतलब ये मेरा फील्ड नहीं है। बहुत टफ था, क्योंकि हम लोग तो उठते थे 6-7 बजे आराम से,
1: जी
0: उसके बाद पढ़ाई कर लेते थे, ब्रेकफास्ट होता था, फिर क्लास के लिए चले जाते थे, है ना। हॉस्टल लाइफ मतलब ईजी था कंपेयरिंग टू द डिफेंस लाइफ, और ट्रेनिंग तो वैसे भी टफ रहता है। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद सोने का कोई टाइम नहीं
1: जी
0: है ना, उठने का टाइम पूरा फिक्स है। पहले हफ्ते में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा, मैं गलत जगह आ गया। तो एक बार मैंने क्विट करने के लिए भी सोच लिया था,
1: जी
0: घर वालों को भी मैंने इन्फॉर्म किया कि होगा नहीं मुझसे, मेरे लिए NOC लिख के भेज देना, मैं आ रहा हूँ घर। तो घर वालों ने पहले तो बोला कि अरे इतने जल्दी गिव अप नहीं करते, है ना, इतने लोगों ने किया है तो तुम भी तो कर लोगे। तो फिर भी मैं माना नहीं, तो घर वाले भी मेरा कंप्लेंट सुन सुन के थक गए, और एक
1: जी
0: दिन उन्होंने बोला ठीक है, कल हम भेजते हैं यहाँ से NOC, तुम चले आना। फिर तो उस रात को मैंने रियलाइज़ किया कि है ना, कि यहाँ से मैं वापस जाऊँगा, एक तो लोग मेरे को पूछ पूछ के परेशान कर देंगे कि
1: जी
0: है ना,
1: क्यों वापस
0: हाँ
1: आए?
0: वापस क्यों आए तुम, ऐसा क्या हो गया।
1: हाँ हाँ
0: तो उस रात को मैं मतलब, एक तो मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई, क्योंकि घर वालों ने कम से कम ये बोल दिया कि तुम
1: कि वापस
0: आ
1: आ
0: जाओ,
1: जाओ।
0: है ना। एक जो भार था मन में कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं तो फंस गया। तो उस रात मैं मतलब एक मुझे क्लैरिटी मिला, और मैं अच्छे से सोचा, और मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, इतना कमज़ोर तो हूँ नहीं मैं, सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: तो उस रात को मैंने डिसाइड किया कि कल सुबह सुबह से आई विल बी लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट, जो क्या ही करवा लेंगे, गोली तो नहीं मार देंगे, मर तो नहीं जाएंगे, है ना,
1: जी
0: जो भी करूँ मन से करूँ, उसके नेक्स्ट डे से कुछ भी एक्टिविटी होने दो, पढ़ाई वाला एक्टिविटी होने दो, ये कोई टेक्निकल वाला एक्टिविटी होने दो, या फिजिकल वाला,
1: फिजिकल वाला
0: ऑब्स्टेकल वाला,
1: जी
0: रनिंग, स्विमिंग, परेड, एनीथिंग। तो मैं फिर खुल के पार्टिसिपेट करने लगा, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। और मैं मतलब 1-2 हफ्ते में ही मैंने खुद को ऐसा ढाल लिया कि अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
1: जी
0: उसके बाद का वो ट्रेनिंग का सफ़र अच्छा रहा, मुझे मतलब मैं इंजॉय करने लगा।
1: जी जी
0: तो मतलब ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, एकदम ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, मेरा लाइफस्टाइल जो मेरा पहले था, और अभी जो मैं जिस फील्ड में मैं एंट्री किया है ना, अब मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए।
1: जी जी
0: तो वहाँ पे मैंने जब एक बार डिसीजन ले लिया, तो मेरा फिर सफ़र बढ़िया रहा, कितना भी चुनौती होने दो, सब कुछ पार करते हुए चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके।
1: जी बहुत अच्छा। और बचपन से ही आपका नेवी बनने का इच्छा था या फिर किसी से इंस्पिरेशन मिला आपको?
0: ना ना ना, बचपन से ऐसा नहीं था, मतलब क्लास 8 तक जब पढ़ रहा था तो ऐसा कोई एम इन लाइफ ही नहीं था।
1: जी
0: एक तो समझ में भी नहीं आता था, पढ़ तो रहे हैं, आगे हमारा रास्ता क्या है, मंजिल क्या है।
1: जी क्या करेंगे?
0: हाँ, तो जब क्लास 9 में पहुंचा, उसके बाद पहली बार ऐसा लगा कि पढ़ाई करते वक्त मैथमेटिक्स मेरा मतलब एक वो बन गया, लगाव बन गया उस
1: जी
0: सब्जेक्ट से,
1: फेवरेट सब्जेक्ट
0: फेवरेट
1: जैसे।
0: सब्जेक्ट बन गया, और मुझे टेक्स्ट बुक पढ़ के खुद सीखना, मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था कि मैं क्लास 9 में जब पढ़ रहा था, तो मैं 10th का सिलेबस भी सॉल्व करने लग गया था, और मैंने 2-3 महीने में कर भी लिया, ख़त्म भी हो गया था। तो मुझे अभी अच्छा लगने लगा, और मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था।
1: जी
0: तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, और मुझे करना ही है, अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो ये सब्जेक्ट लेके ही करूँगा, बाद में BSc, MSc, अगर PhD भी करना पड़े तो इस
1: जी
0: सब्जेक्ट को लेके करूँगा। इंडियन नेवी या डिफेंस या कोई भी जॉब ऐसा कोई मन में था नहीं, लेकिन जब मैं 10th के बाद हायर सेकेंडरी कर रहा था और ख़त्म ही होने वाला था ना, तब हमारे फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल इशू वगैरह आ गया, तो जो मैं करना चाहता था उसके लिए मुझे कुछ फाइनेंस

0: फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए था,
1: जी।
0: जो कि था नहीं। तो उसी बीच मेरा एक क्लासमेट था जिसका एम इन लाइफ था कि वो इंडियन नेवी ज्वाइन करे। वो उसने आके एक बार बताया कि यार मुझे नेवी का यूनिफॉर्म देखते ही इतना मन खुश हो जाता है ना, मैं सपने में भी देखता हूँ कि मुझे ज्वाइन करना है, और मैं 2 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, हो नहीं रहा है मुझसे, तो दिस इज़ माई फाइनल अटेम्प्ट, और मैं चाहता हूँ तू भी चल, मतलब साथ में मिलके एग्ज़ाम देंगे। तो मैंने तो पहले बोल दिया कि यार मेरा एम तो है ही नहीं, मैं तो ये यूनिफॉर्म पहनने वाला ये मैंने कभी सोचा भी नहीं, और है ना मैं तैयार भी नहीं हूँ।
1: जी।
0: तो उसने बोला यार साथ में चलते हैं, बस एक कंपनी के लिए चले जाना, और बोला कि तुम्हारा फाइनेंशियल इशू भी है, है ना, तुम्हारा एम तो है नहीं लेकिन एक जॉब की तरह देख ले, अगर मिल जाता तो बढ़िया है। तो मैं फिर उसकी बातों में फिर मैंने भी सोचा कि एक बार ट्राई करना बनता है। तो दोनों ने मिलके फॉर्म भरे और फिर दोनों का कॉल आया एग्ज़ाम के लिए, दोनों चले गए एग्ज़ाम देने, और अनफॉर्चुनेटली उसका फिर से सेलेक्ट नहीं हुआ,
1: आपका हो गया।
0: मेरा सिलेक्शन हो गया। और जैसे रिटर्न एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया तो वो बहुत खुश था,
1: जी।
0: मुझसे ज़्यादा वो खुश था। मुझे तो मेरा तो कोई एम ही नहीं था ना, तो मुझे तो वो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था, मैंने तो मुझे तो लगा कि हाँ यार एग्ज़ाम था और पढ़ाई में ठीक ठाक था तो मैं मतलब सेलेक्ट हो गया। लेकिन जब उसका एक्साइटमेंट देखा, उसने बोला कि ये छोटी बात नहीं है, मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तुम अगर एक बार में कर सकते हो तो, है ना, तो अभी तुम्हारा जो डेस्टिनी है वो भी कहीं और हो सकता है, वो बुला रहा है, तो तुम आगे का जो भी मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जो भी इंटरव्यू होगा, उसमें थोड़ा ध्यान से देना, ऐसे देना कि तुम करना चाहते हो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ दोस्त ने बोला है ऐसा है तो मुझे भी सीरियसली लेना पड़ेगा, तब तक मैं सीरियस भी नहीं था। तो फिर आगे सब कुछ सीरियसली किया और सभी पड़ाव ऐसे क्लियर होते गया और फाइनली सेलेक्ट हो गया। फिर तो नेवी वॉज नॉट द ड्रीम, लेकिन बोल सकते हैं डेस्टिनी था।
1: डेस्टिनी था
0: हाँ
1: और आपके नसीब में ही था ये
0: नसीब में ही
1: करने का।
0: था।
1: हाँ जी, ठीक है। और हम ये जानना चाहेंगे कि नेवी में रहकर आपने बताया कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में हमें श्रोताओं को बताएंगे प्लीज।
0: अच्छे एक्सपीरियंस बोले तो मैं ये एक जो कॉमन डिफरेंस होता है डिफेंस लाइफ और ये अपना सिविल लाइफ में,
1: जी।
0: वो मैं मतलब बताना चाहता हूँ इसे। जैसे यहाँ पे अगर मैं किसी को पूछूँ कि भाई तुम कल क्या करने वाले हो, व्हाट इज़ द प्लान फॉर टुमारो,
1: टुमारो।
0: और या तो आज ही का ही,
1: हाँ
0: तो 99% लोग बोलेंगे यार सोचा नहीं,
1: हाँ
0: मतलब हम लोगों का आज और कल का ही प्लानिंग नहीं हुआ
1: हाँ
0: है ना,
1: हाँ हाँ
0: क्या करने वाले कुछ पता नहीं।
1: जी।
0: लेकिन डिफेंस में ऐसा होता है, हमको पता है
1: हाँ
0: कल सुबह कितने बजे उठना है,
1: हाँ
0: मेरा एक्टिविटी क्या क्या रहेगा, सुबह का एक्टिविटी क्या
1: हाँ
0: रहेगा, दिन
1: हाँ
0: का एक्टिविटी क्या रहेगा, शाम को क्या करने वाले हैं, रात को
1: हाँ
0: क्या करने वाले हैं, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी आया,
1: हाँ हाँ
0: हम लोग का सब कुछ प्लान रहता है,
1: हाँ
0: उठने
1: हाँ
0: का टाइम भी रहता है,
1: हाँ हाँ
0: सब कुछ खाने पीने का सब कुछ टाइमिंग रहता है। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो एक डिसिप्लिन लाइफ है,
1: हाँ
0: एक ऑर्डर्ड वाला लाइफ है, पंक्चुअल वाला लाइफ है, एक हेल्दी वाला लाइफ स्टाइल है, जहाँ पे हमको डे टू डे टारगेट या एम मिलता है ना, जो कि अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ सिविल में भी फॉलो करें, स्पेशली जो यंग है ना, जो स्टूडेंट्स है,
1: हाँ हाँ
0: ये फॉलो करें ये वाला लाइफस्टाइल, जहाँ पे उनको मतलब सुबह कितने बजे उठना है, कितने
1: जी
0: बजे तक
1: जी
0: पढ़ाई करना है ना, नाश्ता कब करना है,
1: हाँ
0: स्कूल कब
1: हाँ
0: जाना है, आने के बाद क्या एक्टिविटी
1: हाँ
0: होगा,
1: हाँ
0: तो सब कुछ मैनेज हो सकता है, बैलेंस करना ईजी हो
1: जी
0: जाता है।
1: जी जी
0: कोई ऐसा है जो मोबाइल में लगा है, मोबाइल में गेम खेलने लगा है, कितने देर तक देखना है मोबाइल, एंटरटेनमेंट कितने घंटे तक होना चाहिए, कोई
1: जी
0: कैलकुलेशन नहीं है, चलता ही जा रहा है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ हाँ
0: उसका पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है, उसका पर्सनल हेल्थ
1: जी
0: इफेक्ट हो
1: जी
0: रहा है ना, घर का माहौल भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई रियलाइज नहीं कर रहा है। तो भी डिफेंस में तो मतलब टोटली डिफरेंट है, इंडियन नेवी का लाइफ मान लो, या इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स कहीं भी
1: जी
0: रहोगे,
1: जी आर्मी का।
0: मैन इन यूनिफॉर्म जो रहते हैं उनका सब कुछ शेड्यूल रहता है। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए जहाँ पे बाय हुक और क्रुक हमको वो शेड्यूल्ड प्लान में चलना ही पड़ता है ना, अपना मन हो
1: हाँ
0: ना हो।
1: हाँ
0: तो वही चीज़ अगर यहाँ पे कितने चीज़ होता है मन से करना नहीं चाहते लेकिन ज़रूरी होता
1: हाँ हाँ
0: है,
1: करना पड़ता है।
0: करना पड़ता है, तो जो मन करेगा वैसा नहीं है ना, क्या ज़रूरत है अभी इस समय में इस एज में मुझे क्या करना सही रहेगा, तो वो चीज़ अगर लोग करें है ना, जो मैंने नेवी में सीखा है। और इधर आने के बाद मतलब थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है वो
1: जी
0: चीज़ फॉलो
1: जी
0: करने में, क्योंकि अभी इंसान ऐसा है कभी कभी दिमाग से ज़्यादा मन का सुनने लगता है, और मन तो ऐसे भटकाता है इधर उधर, तो ये दिमाग का भी सुन लेना चाहिए है ना,
1: जी
0: सब कुछ एक सोच विचार के अच्छा से सही प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से बैलेंस लाइफ जीना ज़रूरी है। तो इंडियन नेवी का अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो वही है, मुझे पहले अपना हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, अपना फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ के लिए

0: स्ट्रेंथ के लिए, वो भी आइडिया नहीं था। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, क्या एकेडमिक नॉलेज का ही था, लेकिन एकेडमिक नॉलेज इज नथिंग। एकेडमिक नॉलेज एक बस पार्ट ऑफ लाइफ है, एकदम छोटा सा हिस्सा है, एक्चुअल जिंदगी कहीं और है। है ना, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, वो तो कुछ नहीं है, तो एग्जाम क्लियर करने जैसा है, लेकिन लाइफ का जो एग्जाम क्लियर करना है वो टोटली डिफरेंट है। तो इंडियन नेवी ने सबसे इम्पोर्टेंट यही सिखाया, जिंदगी जीना कैसा है, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से या किताबी नॉलेज से नहीं, बाहर का दुनिया भी है, अपना खुद का दुनिया है, ठीक है। तो खुद का हेल्थ, खुद का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है, अपने कम्युनिटी वालों से कैसे रहना है, अपने देश के लिए क्या सोचना है, अपने देश के लिए क्या करना है। आधे लोगों को तो यहाँ पे देश का कोई फर्क भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपना काम चल रहा है बस, है ना। तो इसलिए तो दूसरे कंट्री और हमारे कंट्री में यही तो डिफरेंस है
1: जी,
0: पेट्रियोटिज्म है नहीं, खाली 15 अगस्त और अभी 26 जनवरी आने वाला है, एक तिरंगा के साथ कहीं सेल्फी लेके, है ना, डाल देंगे और दूसरे दिन तिरंगा कहीं और, इंसान कहीं और, देश कहीं और, किसी को कुछ अता पता है नहीं। सही में मैं मतलब मैं पर्सनली मैंने देखा हुआ है। तो इंडियन नेवी में और या डिफेंस में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको कनेक्ट करती है कि ये जो हम बोल रहे हैं ना हमारा देश, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम जैसे मैं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इंडिया से बाहर भी जाने का, तो मैं अराउंड 20 कंट्रीज गया हूँ बाहर, यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज। वहां जाके रियलाइज होता है कि हाँ, देश क्या कितना जरूरी है, अपनापन। वहां पे मैं जैसे इंडियन नेवी का एक यूनिक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं बाहर गए, हम लोग यूके में गए थे, मतलब जब घर से दूर रहते हैं, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप अपने घर से दूर कहीं दूसरे गांव में रहोगे तो आपको अपना घर का ख्याल आएगा, अपने गांव से दूर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहोगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट का भी ख्याल आएगा,
1: वो तो है।
0: अपना स्टेट से बाहर चले जाओगे किसी और स्टेट में घूमने तो आप कंपेयर करने लगोगे, अरे हमारे स्टेट में तो कितना आजादी है, कुछ खाने को मन किया तो मिल जाता है, कहीं रात को भी घूम सकते हैं आराम से, यहाँ तो इतना स्ट्रिक्ट है, तो फिर अपना स्टेट याद आने लगा। वैसे ही जब हम बाहर जाते हैं तो अपना देश का याद आता है, सच में याद आता है। इसलिए तो मैं मतलब जैसे इंडियन नेवी में ऐसा है, 15 साल करने के बाद एक हमको ऑप्शन मिलता है कि हमको आगे कंटिन्यू करना है या रिटायरमेंट लेना है
1: जी।
0: तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया, तो काफी लोग पूछते हैं कि यार और भी तो कर सकता था, मतलब यंग ही हुआ अभी भी, है ना, जब रिटायर हुआ तो आई वॉज लाइक 35-36, है ना। तो मैं बोलता था कि यार पानी में बहुत घूम लिया, देश के अभी जो जमीन है ना, धरती पे घूमना है
1: उसमें,
0: धरती पे लौट। अभी भी मैं जमीन पे सोता हूँ, बेड पे नहीं, आई डोंट हैव बेड इन माय बेडरूम, मैं ऑन द फ्लोर ही सोता हूँ। मतलब ये मेरा किसी को दिखाने के लिए ऐसा
1: जी,
0: नहीं
1: जी,
0: है
1: जी, हाँ।
0: जो जैसे अभी पानी में टहलते टहलते वो जमीन से जो मैं छूटा, तो उसकी जो अभी मेरा लॉस हुआ है, वो मेकअप कर रहा हूँ मैं। जितना दिन पानी में रहा, जितना साल मैं, अभी मुझे एक्स्ट्रा जमीन पे रहना है
1: जी।
0: तो नेवी में अब बोलता जाऊं तो पूरा दिन शाम खत्म हो जाएगा, मतलब आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर, लेकिन इन शॉर्ट वही है
1: जी।
0: कि इट्स अबाउट यू नो लाइफ स्टाइल, बोलते हैं ना, नेवी इज नॉट ए जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना, जिंदगी जीने का तरीका सब कुछ सिखाती है। अब ऐसे ऐसे पर्सन भी डेवलप हो जाते हो और ऐसे सिटीजन भी थोड़ा बेहतर बनते।
1: आपकी बातों से हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता कुछ बच्चे भी होंगे कि नेवी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा एग्जाम्स देना पड़ेगा या फिर कौन सा सब्जेक्ट्स में उन लोगों को और भी बेहतर करना पड़ेगा या फिर कौन सा ट्रेनिंग?
0: इंडियन नेवी या डिफेंस में एंट्री होने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स है, है ना, मेरे पास पूरा लिस्ट तो है नहीं, लेकिन मैं एक मोटा मोटा एक गाइडेंस दे सकता हूँ
1: जी।
0: जैसे अब इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए एक दो टाइप का एंट्री होता है बेसिकली, कमीशन वाला एक नॉन कमीशन वाला, है ना। कमीशन वाला एंट्री के लिए आप NDA के थ्रू जा सकते हो
1: जी,
0: और एक नेवल एग्जाम, नेवल एंट्री के लिए अलग से एग्जाम होता है, वो उसके थ्रू से जा सकते हो, उसके बाद CDS के थ्रू से जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नॉन कमीशन के लिए आप हायर सेकेंडरी रिक्रूट होता है, उसके थ्रू से जा सकते हो। अभी तो अग्निवीर बोल के भी एक नया प्रोसेस लॉन्च हुआ है जिससे, लेकिन दूसरे से थोड़ा अलग है ये, 4 इयर्स का कुछ अटैचमेंट रहता है, उसके थ्रू से भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन काफी सारे वो वेबसाइट मिल जाएंगे, इंडियन नेवी का ही अपना ओरिजिनल वो लोकल वेबसाइट भी है, वहाँ पे आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिल जाएगा कि कौन सा एग्जाम। और जहाँ तक आपने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो मेन तो आपको साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ना पड़ेगा, तो कॉम्बिनेशन रखना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो टेक्निकल फील्ड में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का थ्रू से हो जाता है, और मेडिकल फील्ड में भी जाने का तरीका है, तो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का

0: कॉम्बिनेशन से आप साइंस स्ट्रीम पढ़ सकते हो। और कोई है जो ग्रेजुएशन कर चुका है तो उसको लग रहा होगा कि अरे हमारा तो टाइम निकल गया, ऐसा नहीं, ग्रेजुएशन के बाद कभी एंट्री होता है, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद एंट्री होगा। और मतलब सभी उसमें है, आप इस स्टेज में हो अभी उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके मतलब आगे का सोच सकते। इफ़ यू आर इन 10th नाउ देन यू कैन प्लान कि मैं 12th के बाद है ना 11th और 12th साइंस स्ट्रीम लेके फिर ज्वाइन कर सकते हैं, या तो कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा इन द मिडिल ऑफ ग्रेजुएशन होगा तो वो भी जा सकता है।
1: ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपके रिटायरमेंट के बाद आपने कुछ जॉब लिया फिर या फिर बच्चों को पढ़ाने का कुछ सोचा है?
0: तो रिटायरमेंट के बाद मैंने जैसे पहले बताया
1: जी
0: कि जब स्कूल में था 9th में था तो जो मेरा पहला प्यार था ऐसा बोल सकते हो है ना, जो कि छूट गया था क्योंकि डेस्टिनी तो कुछ और था, मुझे तो गणित में आगे बढ़ना था और मैं चला गया भारतीय नौसेना में। और जैसे रिटायरमेंट का वो आया ऑप्शन कि तुम आगे मतलब कंटिन्यू करोगे या रिटायरमेंट लोगे, तो मुझे लगा कि ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी है कि जो जिसमें छोड़ के आया हूँ मैं वो कंटिन्यू करूंगा। और आपको ऐसे मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं इंडियन नेवी में रहने के बाद भी वो सब्जेक्ट से मैं कभी अलग नहीं हुआ, ये पढ़ाने का जो अपॉर्चुनिटी है मुझे वहां भी मिला, वहां पे भी मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं लोगों को ऐसे जैसे मेरे इंस्ट्रक्टर थे उनके बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ा देता था, तो वो छूटा नहीं कभी, कहीं ना कहीं किसी भी तरह मतलब किसी फॉर्म में वो वाला चलता रहा। तो अभी ये मुझे लगा कि अभी रिटायर भी हो गया, अभी तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं टोकने वाला नहीं है ना, तो मैं तो अभी फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्टेबल हो गया, तो जो पहले नहीं कर पाया वो अभी करने का सही समय है। तो मैंने अभी ऐसे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ अभी तो 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ, तो बस जो छूटा है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय देकर हमें बहुत सारी बातें बताई, आपका हम फिर से धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी आज का ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आए। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलो, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरे सपनों का भारत। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक गीत रॉकी हैंडसम फिल्म का, अंकित तिवारी की आवाज़ में। गाने के बोल अभेंद्र कुमार उपाध्याय के और इसे सुर से सजाए हैं अंकित तिवारी ने। चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सरबजीत फिल्म का ये गाना अमाल मलिक की आवाज़ में। तो श्रोताओं, इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है और अब समय हो चला है फिल्मी गीतों का। तो इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं पलक मुच्छल की आवाज़ में, स्वीटी वेट्स एनआरआई फिल्म का ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
3: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब समय हो गया है अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। तो अब समय है बंगाली गीत का, चलिए सुनते हैं बंगाली गीत का ये कार्यक्रम।

आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे बंगाली गीतों का कार्यक्रम। अब समय हो चला है चित्रगीत कार्यक्रम का, तो चलिए सुनते हैं चित्रगीत कार्यक्रम।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

0: डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ड्रीम गर्ल 2 का ये गाना। गाने के बोल लिखे हैं आर्को ने और इसे संगीत से सजाया है आदित्य देव ने। चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुर का ये गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। अगला गीत सुनते हैं दंगल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और इसे संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं ललित और उनके साथियों की आवाज़ में, अफलातून फिल्म का ये गाना।

तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ आज की दूसरी सभा यहीं पर समेटना चाहेंगे। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:25 हो चुके हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कल सुबह 6:00। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे। शुभ रात्रि, जय हिंद।